0: चीज है हमारा 5 पॉइंट पॉलिसी चार्टर जो यहाँ पे वैष्णवी ने बनाया, हम सब ने उसमें इनपुट्स दिए, वैष्णवी ने बनाया एंड हम लोगों ने सार्वजनिक किया, वो भी सरकार उसको कंसिडर करे एंड हम लोग उस पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन जब ये 3 मेन डिमांड्स पे हमारी एग्रीमेंट हो जाएगी। साथ साथ एक और चीज हमने बताया, कल से दिल्ली पुलिस ने जो भी यंग युवा दिखता है उन लोगों को डिटेन कर रही है दिल्ली पुलिस पूरे दिल्ली से। आपको पता होगा कल रात को, जैसे फॉर एग्जांपल निजामुद्दीन के साइड में 3 छोटे से बच्चे खाना ला रहे थे, उनको पुलिस ने डिटेन कर लिया, पुलिस स्टेशन में रखा। जब हम लोगों ने पुलिस से बात की ऐसा क्यों कर रहे हो, तब उनको छोड़ा लेकिन खाना वापस नहीं दिया। ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हो रहे हैं, शेम। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हो रहे दिल्ली में। तो बताया ये 2 मिनिस्टर्स को, उन्होंने बोला ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन हमने बोला हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि अगर हो रहा है तो वो आश्वासन देते कि ऐसा आपसे नहीं होगा। अब जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे का मामला है वो आशु बताएगा क्या हुआ, लेकिन उसके पहले ये बता देना चाह रहा हूं कि जो हमारे दूसरे और तीसरे डिमांड्स है, कॉम्पेंसेशन एंड FIRs का विड्रॉल और सॉवरेन गारंटी की ऐसा फ्यूचर में भी FIRs फाइल ना हो, उस पर सरकार ने पॉजिटिव साइन दिखाया। सरकार ने बोला कि इन प्रिंसिपल हम लोग मान रहे हैं आपकी ये 2 डिमांड्स। तो कल हमें फिर से बुलाया है। अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो सब लोग सुनना चाहते क्या हुआ वो आशु बताएगा।
1: तो सबसे पहले चर्चा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर हुई, सारे आर्ग्यूमेंट्स सरकार की तरफ से दिए गए, लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ एक बात कही कि जो 21 बच्चे हैं जिन्होंने नीट का पेपर लीक होने के बाद सुसाइड कर ली, उन जानों का जिम्मेदार कौन है, उनका जवाबदेह व्यक्ति कौन है, उनकी अकाउंटेबिलिटी किस पर है। हमने बहुत साफ शब्दों में सरकार को बता दिया कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नॉन नेगोशिएबल है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या उनके कैबिनेट के बर्खास्तगी के बिना यहां पर जो प्रदर्शन चल रहा है, जो पूरे देश भर में प्रदर्शन चल रहा है, प्रदर्शन बंद नहीं होगा। ये हमने आज सरकार को साफ शब्दों में कम्युनिकेट कर दिया है। हमने सरकार को बता दिया कि पूरे देश में इसमें भले ही हमारी शिक्षा को लेके अलग अलग डिमांड्स हो, भले ही शिक्षा सुधार को लेके हमारी 10 अलग डिमांड्स हो।
2: ऑलराइट, सो दैट इज ऑफ कोर्स आशुतोष रांका टेलिंग द प्रोटेस्टर्स हू बीन गैदरिंग एट जंतर मंतर अबाउट व्हाट एग्जैक्टली हैपन इन देयर मीटिंग विद द गवर्नमेंट। द प्रोटेस्ट विल कंटिन्यू इज समथिंग दैट द CJP इज सेइंग बिकॉज दे स्टिल don't have a confirmation on the resignation or sacking of the education minister Dharmendra Pradhan. Let me go back to Dharamjot Kaur, who continues to be with me on the broadcast. Dharamjot, you know, that's the big stalemate that still continues between the government and the CJP, Dharmendra Pradhan's resignation or sacking, and that is where the government has asked for more time. Tomorrow is when we expect a round 3 of talks to happen. CJP is concerned, they are saying this is non-negotiable and that protest will continue not just in Jantar Mantar but across Delhi. The government hasn't said anything about it. No word on the resignation or sacking of Dharmendra Pradhan. Of course, 24 hours might be needed, or the government might be buying more time perhaps to talk to Mr. Pradhan or have their own way to figure out how to get out of this particular stalemate.
3: That's right, Shreya, because I think it's also important to take into perspective all the actions that they have taken within the last 10 to 12 hours, 15 hours for that matter. Because remember, there was a notification that was put out late last night, post 11 p.m. And in the government notification, there was a clear mention of how the education secretary has been replaced late last night. And then we also heard about a slew of other comments coming in, assurance is coming in, including from the Prime Minister himself. First

0: इसको सिलेक्शन किया जाएगा। और आपने ये सही कहा कि इट हैज़ टू बी लोकेटेड एट इन अ वेरी कॉन्सेंट्रेटेड मैनर, दैट्स द नेचर ऑफ दिस इंडस्ट्री। इसीलिए इसमें बहुत ध्यान दिया गया है कि केमिकल पार्क्स प्रॉपर बने। इन्वेस्टमेंट विल बी सिग्निफिकेंटली हायर देन दिस। ये बेसिक इंफ्रा के लिए एक एक प्लांट में इन्वेस्टमेंट कैन बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 50,000 करोड़, 20,000 करोड़, उस तरह का इन्वेस्टमेंट आराम से हो सकता है। एंड एरिया ऑफ अबाउट 8-10 स्क्वायर किलोमीटर्स इज वेरी सिग्निफिकेंट। तो उसमें तो इन्वेस्टमेंट बहुत आएगा, लाखों करोड़ों में आएगा। दिस 1,000 करोड़ फॉर्म्स द बेसिक इंफ्रा जो इसमें चाहिए, बट दिस विल बिकम द मल्टीप्लायर फॉर गेटिंग ऑल दैट इन्वेस्टमेंट। रेलवे का जो क्वेश्चन था, रेलवे में एक बहुत क्लियर थॉट प्रोसेस बनाए, जिस थॉट प्रोसेस में पूरे जितने मेजर प्रोड्यूसिंग प्लेसेस है और जितने मेजर कंज्यूमिंग पॉइंट्स है, जितने मेजर डिमांड ओरिजिन्स है और जितने मेजर डिमांड डेस्टिनेशंस है, राइट। फॉर एग्जांपल पैसेंजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लेट्स से पुणे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिमांड डेस्टिनेशन, बेंगलुरु इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिमांड डेस्टिनेशन, राइट। एंड देर आर मेनी डिमांड ओरिजिन पॉइंट्स। वैसे ही कार्गो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फॉर एग्जाम्पल उड़ीसा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, उड़ीसा के कई जगह दे आर वेरी इंपॉर्टेंट डिमांड ओरिजिनेशंस, जहाँ से प्रोड्यूसर प्लेसेज हैं। फॉर एग्जाम्पल माइन्स है, फॉर एग्जाम्पल कोल है, और बहुत सारे एरियाज है जहाँ पे फिर कंजम्पशन उसका होता है, राइट। तो इसका कंप्लीट मैपिंग करके ओवर पीरियड ऑफ ऑलमोस्ट 14 मंथ्स वी हैव डन अ डिटेल्ड प्लानिंग विच विल बी गुड फॉर नेक्स्ट 20-30 ईयर्स। एंड दिस वेरी डायनेमिक प्लान। अगर कोई कल नया प्लांट कोई अनाउंस करता है, राइट, तो उसके हिसाब से उसको आप मॉडिफाई कर सकते हो। ये सब सोच के एक लॉन्ग टर्म थिंकिंग के साथ प्रोजेक्ट्स डिफाइन किए गए, और इट्स अबाउट एक एक करके सारे प्रोजेक्ट्स आपके सामने आ रहे हैं। इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव प्लान आई वुड से। वी हैव यूज्ड द पीएम गतिशक्ति पोर्टल फॉर दिस, एंड वी हैव यूज्ड डेटा फ्रॉम इंडस्ट्री, प्राइमरीली फ्रॉम द इंडस्ट्री, एंड लॉट ऑफ हिस्टोरिकल डेटा हैज बीन यूज्ड। डिमांड कहाँ पे होती है, तभी आप देखोगे पिछले ये समर सीजन गया और इससे पहले होली गई और उससे पहले दिवाली छठ गई, तो जनरली जो पहले जैसी परिस्थिति थी वैसी नहीं है, सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव परिस्थितियाँ हो गई है। थैंक यू फ्रेंड्स।
1: All right, so that was Ashwini Vaishnav there giving a brief on some of the many issues that in fact came up for discussion as part of the cabinet meeting. Now, Albania's police resorted to using tear gas and water cannons against protesters demonstrating against the Trump-linked luxury hotel project. The protests erupted outside of the Albanian parliament as it plans to pass a $4.6 million subsidy to Kanye West's concert in Tirana. We'll leave you with these images. Thanks for watching.
2: Oh,